आकाशवाणी इम्फाल ngasi इराय नुमित जुन गितांग कुंदरुक इंग सिंह अनि कुंदरुक इंग आगितारा नि थोइनि पानबा सकाप्तले सिंगमा जमापल नि फुनिपाल हाउसिक अयु किपुंग मंगा मखाई तागे बगल लुइनना संगाई चैनल कि थौरम संदोक पाउजरे संदोक चरिबा मेगा हस ड्रामा अहुम दशमिक मंगा थौरम ताबिरिबा सिंगबु तराम न उक्चरी खुरुम चरी

श्री श्री जगन्नाथ देवता तोलब कयाबु ngak piba सेंगलब नंगिन गुंतबु सोंजगे नंगतबु निंजगे पाप चेलब नचा सिंबु चंगजफम पिनबियु खुरुमजरी तोलब नचा सिंगना

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
3: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: 허름기니니 빤마다 아이 코이나 마 밤마시다 통락기바니 응아시가 망하니 수레 아이 코이나 힝코딩길래 앞다나 짤리바 아두보 농 알락바다디 마 밤마시다 아두마게 앞다나 레이람미
1: 야라로 세해라 한덕기 콩쩍다시 아이기 모호트나 아이부 징두나 부럭라 마래
0: 오오 딱가디르보 까나하나 타이도글로 방암가니 봄나막 알라마학다나 강베리바니
1: 나시예시부 가야니 반 크바게 세헤라
0: 무하람기 따레니 반바게 아이옥니
2: 야 이맘 아이코이 아이코이 혹시까리 이똑시게
1: 야라로이 아바스
2: 이맘 사프
1: 아이코이부 모우드나 징드나 마팜시다 부락라바니
2: 어두디 어두디 아이코이 혹시 란기다 막 샘스카르시나
1: 아이코 마두 야드리 누파 앙악도나띠 아이코이기 누피 앙앙 싱야우리 막호이기도 막수 이행도 봐야
3: 호산 덤볼만웅다기 털어 아이가 왕왕나시
1: 아이부 거울이바는 가나노
3: 아이학 버스라기 랭악 마푸 이브네 지아트 하이비두니
1: 이브네 지아트
3: 털어 덤볼만웅다기 하우직 나하기 아빠암바카리노
1: 아이기 아빠암바디 구파다 짱무니 마름디 마코이나 아이부 거우바기 락바니
3: 마두 야로이
1: 아두디 아이코이 마카롬다 한카게
3: 마두수 야로이
1: 나트라간 아이코이 물카 삼다 칼리파 야짓기 마낙다 찰할루 마하카 와리샤나게
3: 마두수 야로이
2: 아두디 아이코이 부카리 타우 하이바
3: 아바스 나코이나 타우가다바 하이바부 칼리파 야짓다 바이토 나콕 논두나 창조 마드다 야닝드라바디 랄토
2: 지앗 나학스문나 칼로 이맘 우세나 카람나 야짓다 콕 논팜 톡바게 마학 마사나 야레 하이나 칼로 무슬만네 코이 뿜나무나 마두부 야팜 톡브라
3: 카리
2: 야짓 카람바 미샥노 나학 칸드브라
3: 칼리파 야짓 이슬람 기 두니아 시기 마붕오니 마학나 모민 뿜나마키 아밀 오이리 하이비시 나하캉다브라 아바스
1: 이브네 지앗 이슬람 기 마눙가 레이리바 능망 나 수마두 파오바 캉마 암다브라
3: 후세인 이슬람 기 마푸 오이람바 나보다우 무함마티 살타넷 밤키데 능디 살타넷 기다막 쿠파싱가 로우투 나바 락레
1: 코리
3: 칼리파기 마욕다 레이바 쿠딩막 마하키 약나바니
1: 히즈리기니 푸수바 사히다 이파이붕오부 사히트 토비크라가 यांब इमाम हसन ने इस्लाम के खलीफा होई की मतम दुदसु यजिद की मपान लान तिमसिंग न रखी यांब इमाम हसन ने मतम दुदसु मुसलमान मसेन की मरकत ई तहा निंग दबदगी खलीफा था तरु कोरम लगा था दोखी मांग था कि ब खलीफा आते ही गुमना कुरान के हुकुम मतुंग इना चुम बत तौगनी अमसुंग महा की मतुंग तारक प खलीफा दी मुसलमान पुन मंग ने याब मी वहन गनी मागे खानदान दे सिनरम द भाई न वादा तो लगा याजिद की मपा मुओ यादा खलीफा की सल्तनत पिथोक लंबन आई कोई न संतलत पालम लबदी इस्लाम के लेबा खुदिंग म की चुपली पाए रिबा इमाम हसन न मंगक कन ब मु या बु सखाय रम ग दबनी
3: हौ जिकते मुओ या के मचा यजिद न खलीफा ओइखरे मदु की दमक न कोई न कलई असिनतरा
1: हे ने जियात अदुम न करेम न गनु अहा खलीफा की सल्तनत पांब मीनते यानखिब करार की वांग मद नमदु न खलीफा हबजलम ने
3: करार की वांग मद
1: यू थकप ओक दबीबु कराम मी हाट पदा चुमरान थी दब यजित न खलीफा ओइ बसे मुसलमान म ओइ रिब नंग नसु याफम थोकते
3: कुरी
1: मस्जिद ब ओइ न यजित पु खलीफा ओइ बद मतिक साब मीनी हाय न करम न बय तौगदगी
2: ए जियात नहा मुसलमान आइकोई बहुत कनाऊ कुफाद चंग बियारो हैर बसु आइकोई मक्का दहन कीगे
3: अबास आहान ब उन बद नंग न एंगों द सलाम तो द बगी मरम करीनो
2: सलाम
3: ऐसी मुसलमान न तबरा
2: हल्ले बैट की मीसिंग बु ताजिम तो भी महुत्ता याजित के हुकुम मुन है न लुम न लोवा नंगों द कर्म न सलाम तो नहीं
3: चच्चा या हुसैन नहाक रसूल की इनी ऐ नंगन द कुत्तानिंग दे सही सलामत ಯಜಿತ್ ಬೈತೌ ನಕೊಕ್ ನೊಂದುನ ಚಂಜೌ ನತ್ರಗನ ಲಾಂತೌ ನಬ ಸೇಮ್ ಸಾ
1: ಹೊಂಗಫಮ್ ಅದೋ ಹಂದೋ ಜಿಯಾಟ್ ಐಕೊಯ್ ನಿಪಾಸಿಂಗ ಅಸಿಗೆ ಖಂದ್ರಬಸು ರಸುಲ್ ಗಿ ಮುಂಗ್ ಮನುಂಗಿ ನುಪಿ ಅಂಗಾಂಗ ಅಸಿಗೆ ದಮ ಕಲ್ಲು
3: ನುಪಿ ಅಂಗಾಂಗ ನುಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ತಾವ್ ನುಮಿತ್ ಹುಮ್ನಿಗೆ ಮತಂ ಪೀಗನಿ ಸ್ವಪ್ನಗೆ ನುಮಿತ್ ಹುಮ್ನಿಗೆ ಮತಂ ಮೊಹರಂಗಿ ತರಾನಿ ಪಾನ್ಮ ಪಾವುಗೆ ಮನುಂದ ಮಸಾಗಿ ಪಿರೇಪ್ ಲೌಜೌ ಐಹಾಕ್ ಸುಲ್ಹಾಗಿ ದಮಕ್ ನನಾಕ್ ತಲಾಕ್ ನಟ್ಟೈ ಮೊಹಮ್ಮತ್ತಿ ಖಾಂದ ನಲಂ ದ್ರವದೆ ನಶದು ಮಚ್ಚೆತ್ ಮಚ್ಚೆತ್ ಸೆಗಾಯ್ದು ನಾ ಠೀವ ಪಂಗ್ಲಂ ದರೋಯ್ ದಬನೆ
4: ಹಿಯೋ
3: ದಾವ್ ಐಗಲಾನ್ ಮೇ ಪುಂ ನಮಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಅಮಶುಂಗ್ ಮಾಗಿ ಖೊಂಗ್ಲೋಯ್ ಪುಂ ನಮಕ್ ಪು ಪುರಾ ತುರೆಂದಗೆ ಇಸಿಂಗ್ ಇಳ್ಕ ಅಮ ಪಾವ ಠಕನ್ ಮಿಯಾದೆ ಯೇಂಗೆ ಕಯಾಂ ಕುಯಿನ ಮನಂ ಕಂಬಗೆ ಹಾಯ್ಬದವ್ ಕಯಾಂ ಕುಯಿನ ಕುಲಾಯ್ ಪೈಕತ್ತಬ ನಂಬಗೆ ಹಾಯ್ಬದವ್ ಯೆಂಗ್ ನಬತಾಯ್ ಚಲೋ
4: ಯಾ ಹುಸೇನ್ ಐಕೊಯ್ ಹೋಗಿ ಕರಿ ತೋಬತಾಯ್
1: ಯಾರರೋಯ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಫಮ್ ಮಸಿದ ಐಕೊಯ್ಬು ಐಕೊಯ್ಗೆ ಮೌತ್ನ ಚಿಂಗ್ದುನ ಪುರಕ್ಲಬನ್ ಅದುಬು ಐಕೊಯ್ ಯಾರಿ ಫಾವುದಿ ಯೆಂಕಿಬ ತಾರಿ ಮಫಮ್ ಚಾಬ ಯೆಂಗ್ದುನ ಗುಹಾ ತೌರಗ ಇಸಿಂಗ್ ಫಂಗ್ಬ್ರ ಯೆಂಗ್ಸಿ
4: ಗುಹಾ ತೌರಗ
1: ಅದುಗ ಲಾಂಚಂಗ್ ಅಸಿಗೆ ಅಕೋಯ್ಬದ ಲಾಂಕೋಂಗ್ ತೌಕ್ಥು
4: ಲಾಂಕೋಂಗ್
1: ಮದುಗೆ ಅಕೋಯ್ಬದ ಮೈ ಥಾದುನ ಥಮ್ಗದವನ್

0: मुसलमान वेरगा अल्लाह की दबर
1: आई कोई न हाय भी इल्ला बदी पुड़ा तुरेल की इसिंग पी न थक चो नत्त न दी
0: हो नुमित हुमनी सुपना मरुभूमि की लेंगोई चेता मथक सीधा आई कोई वो इरिक कम फाव खनाव से चलन द दुना पुड़ा तुरेल की सिंग वो न पोट नरन गुम न थिंग लीबा न कोई नरकता इमाम हुसैन वो कुपाद लाग पीने वो बार्तों तोरक की बसिंग दो देगी बयाम में यावरी बनी का
1: तंगे आई नंगी बयान तान न बा मफम मशीद लाग बनते
0: जिया
1: आइंग नुंग चिल मफम सिबु संगी बसी नंगी बयान तान न बनते न थाउ ना ले रबदी कुटलाई पाइकलो लांग तो से
0: आई कोई लांग तो लाग बनते जिया दन दौलत पुसुए कोई कलकते
1: अब्बास ताब दनुआई ताब दनुआई न कोई न कुपासिंग द लोटू न दुना सल्तनत पुमुंगे कन मनत्त न दे मकाद तुमिन न लाई गे हाय दुना करी की हुरान न कुपाद लाकले
0: हे बेवकूफ आलम पुन्न मकी इस्लाम की सरदार ओयरंबा इबुदोंगना खजुर मनान कुपकांग पोकत लेरगा वायल बिसार तोरंब नत्रा
1: बॉस
0: इस्लाम की ताइबंगदा महा की हुकुम खक गायरंबा इधोंग नोम तसु नकुइन सेट चारीबा सना लुपा हट पफिजोल गुमना सेट चाखिबा
1: बॉस
0: आई कोई इरक तगी कनाना न खोई गुमना नापल तो याउगे नमाइदो इकायो अल्लाह बो कियो
1: न कोई की तेंग था न है कौन तना कबला के लेकंग लासी पेठबंग अम्ब्रा है बदो यंजो
0: जिया
1: हलीफा यजित युरक पतिं कंग खुदे मक सत्तोक तुना लंतो खेगने
0: जिया
1: कम दोई आवाज नंग इसिंग दुयाओ रिब्रा इसिंग याओ बचपो तो आई लानमी इसिंग तेंजे ना थुगाई करे नंग मनसु वंगं कमजाओ हुन मसाई चलो नबुंगो इमाम मदद हाई चलो यजित बैठो नत्त नदी कंग कंग न सिहल लगा कटबला के लम्हांग सिदा लंजा क्वाक न सेट सेट तुन चांगरे
0: जिया कुरान की खिलाफ ता हुकूमत तौबा मत ता अल्ले बैठ सिंगा कोक नॉन जग दबा लेते
1: दाउ कुपा के लानवी पुम नमक मंग कंब हुसैन की कोंगलोय पुम नमक मसान कुलाई पैकत चुपावा कंग हंदुल थमगदा बने कनवा को मना ये हुकूम थावो इधर बने खुदक तबना कक करे

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून तराम नोक चरी मिंग लाइफ हम भाई भी बीमी सिंह जमे थोंगाम ले काई देगी को करी करम बुआफ़म पुखत भी गनी ऐसे की थोड़ा मदद सर या बिरक पा अखोई इनाक तर रेडियो सेट कुंबले बीब्रा अखोई इको चटपटा उनकी तंग लाए को की तंग मैं अपन ना नुगाई ना तामिन ऐसे की तंग लैपटॉप पे
2: थैंक यू।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड
1: कौन है?
0: आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तराम नोक चरी का ना हो भी रबनू।
1: ऐसे फोन दे दिन ऐ अन्य ओहुं जिंग अमांग जंग ले ना तो ले ना कि अलाम मतों जिंग ना ले ना तू जब भी ने संधि और जा संधि छंगों लाइक फोन की अजगी अमादी कुम्बो फसना नोंग की अजो हाउ जी शो अंगा मतो इन जिने अजो माने तो बजो पानी के गम बता रे दी तो मेरे के लिए कोई लोग को कोई ना वाली से वा बस फस तो ना बस तो को लोग को काओ भी के ब्र खन जी अंगा मतो इन जी
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝꯗꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯁꯨ ꯂꯧ ꯎꯕꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯆ꯭ꯋꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯊꯧ ꯇꯤꯡꯊꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤ
1: ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯃꯦꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून. का नाम बीरा बनो.
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून.
1: फंदर जे मरी मंगा ते फोन चलाव ने मे गएगा.
0: होय होय
1: तांचाना दबा.
0: होय होय. हजिक ती मा पाचाना लगे फंगे.
1: हाय बी जाम खला काय देगी. इदिन जा साइकोम मे
0: इबेम जा साइकोम को. करी करम बो फंग फंग दो पिगनी. हाय बी होय बेम चांग असि की थरम दा सरो या बिरक पा.
1: हा मैम, आइन खाइजिनिंग ब्रामना. ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯆꯪꯉꯤ. ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯩꯕ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯥꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯡꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯣꯠꯄꯤꯗꯕ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ.
1: ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯛꯄꯤꯔꯣꯏ, ꯀꯩꯁꯨꯝꯇ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯐꯠꯇꯕꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯠꯁꯜꯂꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯄꯥꯎꯊꯥꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯄꯣꯛꯆꯩꯕ ꯃꯦꯗꯥꯝ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ.
1: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯐꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯥ ꯆꯪꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯇꯧꯍꯧꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨꯅꯣ ꯃꯃꯥ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ. ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯛꯆꯒꯦ ꯏꯆꯥꯗꯨꯕꯨ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯗꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ. ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯃꯦꯝ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯦꯝ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯕ ꯊꯤꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕꯁꯤꯁꯤꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ, ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄ. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ. ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ. ꯃꯦꯗꯥꯝ
1: ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯕꯨ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯅꯣꯉꯥꯜꯂꯕꯁꯨ ꯊꯕ ꯂꯩ ꯃꯅꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ. ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯇꯥꯈꯤꯗꯕ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯑꯩ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯔ ꯑꯃꯣꯏꯅꯀꯣ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯈꯠꯆꯒꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗꯁꯨ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ. ꯍꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯊꯝꯖꯔꯦ. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯇꯥꯟꯁꯤꯖꯒꯦ.
0: ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ.

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून तराम नौ चरी कना आई बिरबनो
1: आई निगम थोंग जाउ दकि नो मई कापम तनुजा
0: नो मई कापम तनुजा तनुजा कमाइ तोरि के नुंगाइ रि ब्रो
1: अ नुंगाइ जेरी मैम
0: होय होय नसी की गुड आफ्टरनून लेडीज की अरोय ब कॉलर ओइना वारी साब फंगजे दोइनि को हाय बिउ करि करम बो आफम फोंग दुक पिकनि टाक पिउ
1: मैम आइने हाइजेनिंग न दिबो को अखोई मी अटोपी दुकान बुदी नाते दुकान सिंचे मीसा निमाई येंगो अखोना पोटे हाथी लेब अखोना हरा हरा तौबी पैसा नौसा खरा पाइब खरा कौब मी पोटे मैं मैं लेब मीसी हरा हरा हे तौबी अबदी अम पोट ले चाचा मोन तौब कनोद उगद थवाई नाइजद है मैम अगुबद
0: ममांग तनुजासे अखोय अटोप थरुम सिंगदसु अदुगा गुड आफ्टरनून लेडीज के थरुमदसु हाना वारी साख्रे
1: साजाख्रे मैम
0: अदो वारी दिनु आइनु आइने साख्रे हौजुबो पाखत पफत पिद्रि ब्रो
1: पाखत पहाय बन त फते हायनी आगे खनबदि एक यामे बको दु बने
0: होय होय
1: तनु तो वहाय जारे
0: हायरम दाइ द काउथोकिबा
1: हायरम दाइ द काउथोको मैम
0: होय होय ताब अखोई थरुम सरुक याबिरकुमदी से मैम गई थमजरीब थरुम से गुड आफ्टरनून लेडीज नुपी लमदम से नुपी सिंखक्तना सरुक यानबगिदमक्त थमजब थरुमनिको तोंगान तोंगानब मणिपुर की काचिन कयादगी नुपी सिंगना टेलीफोन तौबिरकानदंगसाइगी फोंदोक पिरोप वाफम सिंगसिना थरुम ताबिरिब सिंग पुन्ना तामिनरकान वाखल लौसिंग ओइमिनबनि अदुना तनुजासु मथंगी फोन कॉल तरोप मतमददी नसिसि यामकानबो वाखलोन अमा पुखतपिनब नोट दौसिन बिरो अदुगा लेपतना मखाताब थरुम सिंग द सरुक याबिरो
1: पोइ थागतरिने
0: तराम नोकचिरि लौखचक्रिब फोन कॉल असिग लोइनना पुंगफम सिदा गुड आफ्टरनून लेडीज लानथोक्तना ताहनजब लोइचिरि थरुम असिगिदमक असिगि ड्यूटी द लैबिकिब इंजीनियर सिंगदि ङाइरांबम थाज पुंगफा अमदि लाइस्ट्रम सरत ट्रांसमिशन असिगि ड्यूटी रूम मैनेजमेंट गि थौ पुबिकिबि माइबम सिमा लोइनना अदोंगि फोन कॉल ओकचकिबि खुंद्राकबम आदित्य देवीना टेलीफोन तौबिरक्तुना थरुम सरुक याबिकिबमदि थरुम असिबु लोइब फाउब ताबिकिब पुमनमकपु अमुक हना थागतब फोंदोकचरि आकाशवाणी इम्फाल हौजिक चैनल असिगि मखाताब थरुम गीत मालागिदमक अखोइगि अनाउंसर वाइकोम सिंखैंगानबद खुसिनाचरि

ये आकाशवाणी इम्फाल का शांघाई चैनल है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। मैं वाईकोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में इस गीत के साथ। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत जतिन ललित का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा से सुजाता त्रिवेदी और कमाल खान की आवाजों में। गीतकार है महबूब और संगीत ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म गजनी से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल का गाया गीत, गीतकार प्रसून जोशी और संगीत ए आर रहमान का। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के शंघाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी से अरिजीत सिंह का गाया गीत, गीतकार है रश्मि विराक और संगीत जीत गांगुली का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म हम दिल दे चुके सनम से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत की आवाज़ों में, गीतकार है महबूब और संगीत इस्माइल दरबार का।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोकचरी इसई सक्तम मुहाराम इसई असीबु सैसकली बसिंग दी ललित काला संगम की सैसक पसिंग अईब मुश्ताना आश्रप अली खोंजल दा आरके मास्टर बॉय अमदी ख्वायरकपम मीनाक्षी थोरम पुथोकपा हाइक्रुजम देवेंद्र
1: साइबम पानसीबु शेंबी शाबीरीबा अल्लाह मपु महाकना मियोइब खुनाइबु अचुंब लंबी द लमजिंगनाबा मियोइ कयामु पाखोलो येने हेहे थाबिरकतबनते कुरान गी मनुंग द याउरीबा सुरा अंबिया कौबा तांककदुदा असुमने ईरी मदुदी हे ताइबम मियोइबा नखोइगी नरकता नखोइगा चपमानाबा ख्वाइदगी फरबा मिशकमा अयहाकने थारकलीबनी

संदोक्तुना ताहन जरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देखनी हाउसिक पुंगफम सिदा अमुक पुदुना लाग जरी तोंगान तोंगान बा मणिपुरी फर्म सिंह देखी लौखत जब इसे सिंह

0: 이능 시로 이렇게 바봉 나서 아이 고이 내리베시리
1: 아이 샬루 낭나 마다비데 하이루 마우야이 마기 마 바봉도 하이잉아 육육 마시데 락타바 야디 하이우
0: 파니 바봉 하이제로기
1: 샬루 와칸 마 파우치 안카
0: 파니
1: 아이 개서
2: 오
1: 샬루 낭이 나바이 봉오도 하이잉아 육 युम मसीदे लागता भी याद दिए अकन म पाऊ चैन खो चलो हा गोविंद कृष्ण इबंगो हयंग युग नोंगान म पाऊंग आगे देव से ओन थोंग नो वा गे देवरी दा
3: बेमा ता इबे म बसंती निओ न म पाम न हलगन लेगा सी पा दे के पाम न भी वानी न लेगन न वाई थ दिकन न नि शास्ती ला ला ला थोलो करी जिने न है न हा न दुम वा ते लेगो पा ले रिस्ती लाई पा लाई स सलो रसी
4: ए ए सबे ए करार करी है नोरे
5: हेरा पुलिस ने थिल्ले थिल्ले के भागता नहीं ने
6: तमा ए फम सी लेंगे ब्रो
4: कह दो रे
6: ए फुबिरे नहीं तमा
4: छे नंगो ने कनान करी मरंगी पूरी बा
6: कनान ओ नी गे म पारिक पे मसा बसंती ने नी दना
4: ए अदु करी मरंगी फुगे मरम दो आयो मे
6: करी गी ओनी हबे गी अखोय गोन सी लेबी दनु ना कोई चलो हाय ना ता थो बेदा मक्ता लिख छो ला मते में ना कोई डॉक्टर साहब से हट करे ता
4: मा बात तो मल दी
6: ता मोले ने ऐ चले दम ने फिरो लो छलो ने ता मो
4: ए चलो अच्छा मिलो चलो शेरा मा पा अरिक पा इकी में क्रॉस तो देबा अदु ना करी छो आई तो के ने है
7: ए ए तो तू आई दे मा इबु वो सो थो ए
4: सनो खे छले रे मी
7: ओ ता रे मी
4: ओ ngasi सनो खे तो बिरो मी सिकै नो औ ता आइ बियो मी गी मा पा मचा मचि में ना काई ना मचि लगा सनो खे करी तो लेके
7: ชอบทัวร์ชอบทัวร์ไกรใช่นอนน่ะไปบุหรานมาเชิงครูมันก็ไกลทุกข์กานาคแก่แล้วมันยังมันต้องมันขนาดนั้นอยู่ตาวนตาวนตาวนครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
5: माली ने
3: छक आई सेप मस्ती बे ते लार बसे पुहम बा तारो
5: चिंद कर फजमना चुंबो दी आई बसे कोट जर पदा पुलिस न थिल थिल भाप तांगे
3: चाउ थोए
5: चाउ थुई गारी ने
3: इशा ने पादारु गानी
5: सिया
3: आई लाइव से न खोई खोने से मंगम फोन दिल है
5: ए नंगी ने चालू पा दारू गा दनी ने है न बुंगो चाउ थुई है से खंगरा
3: चाउ थुई दिन ने ने है दिस
5: रे
3: लकी मुक्त गाई खो मुक्त गाई भी खो से से इबुंगो नंग गांग गांग नी बुंगो अमुक त फमु
1: चले क्या मसी इसेन ये इमा का कौजेरी बसे खन शायद ने कौजे बन च दिए ने खन शायद ने कौजे बनी
5: अब तले के मान ने सही वंदा
1: हाय हाय बोहल करिया के पबुआ
3: नचना ना ओ मग थोरो है मऊ ओ मग से थोरो वांगांग ने गदे बंगाय रे बनी
6: बाजी हक पुजो कोबी ब्रो
1: आ न खो यो मग ऐ ने कौ बनी
6: आई दी इमु असि की मओ मोइना बाजी ओ इमा ओइना हाइबदे इंजेगनी अंगा तो मुद मसा अंगम द्रे मुंगदा छम लई जरेगी
1: वा सिंगसी ता सन बदी फबनी अदेबु अंगा मसा अंगम दे हारे बनी न चलो चलो नंग चंगो हाय महादेव दु कैदौरी के यम थोरो आई
6: इमा सु को थोरो र बाजी
1: हे राय नंगा ये दे माग मिनु पिन करिया है संसार के दोरिम न
2: यु मनु के न मारे बि बरु दि पुतो करा थाय हले मन जेबा इचे जा जुजा पति खने खने छुम नंदन ने कपरबाई तो रंगई सभाजे यौरे बाबू
1: आय महादेवा मांग इबै सि कनानो नंग खंगरा मांग दे फमि बनी पास ने कनानो मिटई मचा मोइना मकुबो उरग करीबे भार तवग दे गेसु खंग दे बनंग ना लई म पाले ने पंगा ngang साब रे है
2: इकु
1: ए सनख्या आइगी नुपीबु आइगी इचाबु आइने ngang मदि इलन मंगम द्रबा इथक तक का ने लबा दु मनी पा दु नबु मिरक त चंग प मतम दा माग दु बु मिने लंग निंग बा नोंग न निंग बा शमशा न ताव न त्रेने छे
3: अस मनी बाय हल नुपी ngang वर पुवाती मंगम द्रदी निपा मोय न ले बे करी कर न रगी बाय हल करी गु मई गी शान पी बसंत यस न मंग मंग से काय न न बसल मोर सु इबाय हनी खुसान न बवार वाथे बियो
1: ए मऊ सिंग बवार पाय दने इशा सिंग गी दाइनी आ हल्लमन ऐ खोइना अमुक तंग म खोइ गी मऊ म तान न बसिन बता रे सने ख्या
3: हगनी बाय हल
6: ता म ना सिदे गिना चल लउ हिंगो गन त पांदरे Nasangi ne mayam chima pham changja pham bibiro mone ta mo.
8: Kaide une age. Lala robni na haijo bata re dena. A mama, namak lale. Aegi dal ki tamak ta mayam bicha khunje ke namak kunga phi mama.
2: Kai ha re.
1: E ma kai mo une men tarak pusri mung se khanging inge de be mali da.
9: Ma de ba.
2: Ta mo.
9: Keso.
2: Ta mo.
9: Nasi de ke khoi ge mon.
1: Hoi re hoi re.
9: Houseful.
10: Aujek tabi kre sumang lila houseful sanabi kibakangbu manipur ko artist association gi lila kangbuni tarom sandokna tahan zariba se akashwani imphal gi fm sangai channel ni aujek pumphum selan thoksari moirang tem bisesor de gi mandolin

0: ꯇꯥꯏꯐꯣꯏꯠ ꯐꯤꯕꯔꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯐꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯐꯣꯏꯠ ꯐꯤꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯐꯣꯏꯠ ꯐꯤꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯏꯐꯣꯏꯠ ꯃꯦꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯀꯨꯛꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯐꯨꯠ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯨꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯐꯨꯠ ꯁꯔꯕ ꯑꯦꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯏꯐꯣꯏꯠ ꯐꯤꯕꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯤ 1,000꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰ 아두는 양 페머스 웨이브 케이스니 아두 마마 사목시 게리어니 에버 하이디 마마 사디 라이나 라이옹지 울로이 두이니 에버 아두가 만 헤드 풋 삽도 루브 미싱제 라이나지 만 로이 산도엄버 스마이 톡드나 코이네 게리어 하르가 코이 스마이네 양 파저브 엑잠플 말레 아두나 보드 코이 케이스 아무슨 게리어 아니 막세 양마타나 코인 다이노시스 타우르가 마랑나 코 헬프 페실리티 에메네 살라가 라이나 라이옹지 레이타르가디 알리 다이노시스 톡톡파 아두가 트리트먼트 타호 당아이 퍼든 타고 더 타봉니 아두가 사기 chronic career hai tare career we missing se si da dia kuina atopa kun special consideration kare dar kale hai we missing je dia kuina sai gold bladder is the makes you pure sector bin mangon de surgery pho to dar kale hai the cholecystectomy hai na koi gi gold bladder je lok thop dar kale surgery to dar kale hai we cholecystectomy je tok dr ga di man makes matang matang matang matang ma ma sa de adum chan do lai
1: de
0: ma hai lady pho and there my life span se da adu na hai we missing se কুইন সার্ভিলেন্স তো বম দরকার লে আনি সুবুদা পার্সন এন্ড হাইজিন আমাং সং চাঙ্গুরে আকুই চা ইনজাং থং বাই বয়রো হাইলি বা পোচিং জি তৌডিং ই মমাং দা তৌরব মতুং দা খুসা সিং না সাপোন তৌরগা হামতো পম দরকার লে আদুগা মরু ওই না আকুই ইন্ডিয়া গুমবা ট্রপিক্যাল রিজন ওবে ইয়ান জু সাবা হিউমিড ওবা কান্ট্রি সিং দে দি আকুই টাইপো ফিবে জে সিজনাল ওন এপিডেমিক ওন লাইব হাই উইথ থ্রু অফ দি সিজন হাই উইথ দি সহি খুদিং গেদুম নারগ লাইব কো আদুনা হাইবা জগা সিংদে দেখি স্যানিটেশন হাইজিন সুগুমবা ওয়াটার স্যানিটেশন হাইজিন কই না সামনে কানে ওয়াশ হাইরা খংনি কো ওয়াটার নে স্যানিটেশন নে হাইজিন নে সি হাইবা মেম সিংছে ইয়ামনে প্রপারলি মেইনটেইন তোবমা দরকার লেবে কো হাইব দি সেফ ড্রিংকিং ওয়াটার থকপি বা আদুগো কই গিম গসাই গি স্ট্রিট ফুড কুমবা সাবো কোপ মতম ন সাই আইনে হাইজে গিবা মমা ফজনে ইংবি বা আদুগো সা দিনে থকতুমি মন ফজনে খুসা সিংনা হামবি বা আদুগো লাস্ট কই ইমিউনাইজেশন ভ্যাকসিন লাই হাইব টাইফয়েড ফিভার যে লাইতারগা দি কইনা ভ্যাকসিন যে কাথোপিবকো মরুইনা কই ট্রেভেলার্স আইতারে লামছাং চপ মিউসিং যে সিদ দি কইনা ভ্যাকসিন যে কাথোপিব ইয়াম তঙাই ফদনা ইয়াম দরকার লাইনা আই হাইজেনি
1: হুজিকি ভ্যাকসিনেশন তোবসে মাসি সিনা কেম ইয়াম না কই কিওটো বুদিং অঙ্গনি দু সাই ডক্টর নপন বিব কই ক্যারিয়ার ওইরি বসে মাসি দি পুরা ফুললি কিওটো বয়া বগি চান্সেস কো মুদি লাইবরা সিদা কিদং
0: ইয়াম ফজব কোশ্চেন ফুললি কিওটো বগি সায়েন্স দি খার ওয়াগনি কেরিয়ার সে আইটি পার্সেন্ট দি কিওর তোমেন হয় মমানদা হাইজিব সার্জারি তোর মাকে কোলিসিস্টেকটোমি হাইনকো গোল ব্রেদার যদি মাঝে কেরিয়ার তোর চাতুনি মসিংগা তোরব আইটি পার্সেন্ট হতনি কিওর তো রিমেইনিং টুয়েন্টি পার্সেন্ট স্টিল চান্স লাইব মাছে পুবো
1: স্কুল আগামী কেরিয়ার কম খানগি কেসেস
0: আদমাই হাইজিব সার্ভেলেন্স হাইব দরকার প্রপারলি স্ক্রুটিনি ফুড হ্যান্ডেলার্স হাইতারে কুক হইব মিং ফুড সার্ভ তো মেয়ে রুটিনলি চেক তো দরকার
1: অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স নতুন হোটেল
0: ফুড স্টল স্ট্রিট ভেন্ডার বুগের হোটেল গুবরকো
1: মেরিগি কেস তো
0: সোমদিনে হাইজে তৈরি সার্ভেলেন্স তো দরকার আদাই ইমিউনাইজেশন যে ইমিউনাইজেশন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট দি কিওর তো ভ্যাকসিনেশন टीका थारगासु अदुगा खुई वैक्सीनेशन तोबसे मरुइना खुइना तोदिजे स्पेशल ग्रुप खरले मरुइना साई स्कूल चलि बंगांगसि अदुगा ट्रेवलर साइटारेको मरुइना डेवलप कंट्री जति टाइपो पि भजे पाक्ना गन्देब डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलप अखोई अफ्रिकन कंट्रीज अदु एशियन कंट्रीज को सुगुम बसिंग अदु लेटिन अमेरिका सुगुम ब कंट्रीज जे आम नागलेब कलि गिनो हम तम नंग साई केन हाइजिन अदु सेनिटेशन पोलोय बेगिनि अदुना हाई ब कंट्रीज जे डेवलप कंट्रीज छमना कने यूएसए यूरोप कंट्री देगी लाप म्यूजिंग जे मुदि सेटिंग हप्ता नि मोंग द टाइफोइड वैक्सीन जे काथोक पदर काले
1: मरोइन अंगांग द नागन म द खोइगी फीवर दुगो टेंपरेचर यंग वांग ब सिगि केसे से खोइनि अम तोइन थिंग न जब सिगि मतांग दे खोइ फीवर ग टेंपरेचर वांग ब खोइ मसा सग पाइब ताले सिगि मतांग द सु डॉक्टर खितंग खंजे होगि
0: खोइन मसा सग ल पजिदा इन स मोंग द हाजे गिब एयर आ हेद न खोइगी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नाइ दन को अंगांग सिंग मरोइन सही मंगा गि मखा द सिदा अंगांग सिंग द यम तोइन नागन ब लैना मखलमनि हौजि उजिक्सु दुम यम तोइन ना ब खोइ दुम ओपीडी द लाप ब थिंग न जे मसीद मरुन यंगी फीवर तब मतम से फीवर से लो ग्रेड फीवर अब हाई ग्रेड फीवर सिगे लाप खाइदे खाइद कलर कोडेड क्लासीफिकेसन लेजेको पिंक कलर येलो कलर ग्रीन कलर हाइदनको पिंक कलर से हाई ग्रेड फीवर लाइव यम कपे थमगनेबको हाई ग्रेड फीवर लाप आगाम फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशन इ टेस्ट कुम्ब तौब खर मथौ ताइ मरुइना हौजिकि मतम जदि अखुइ कांगदि संदोप लैना सिं मरुइना याम तुइना खुइना थेंगना जाबा अखुइ देंगी अदुगा मणिपुर द याम तुइना हुजिकांद दि याम तुइना नाबदि थेंगना द्रे खुइ मलेरिया कुम्ब जापानीज इन्सेफलाइटिस को मस्किटो बोन डिजीज जे सुकुम्ब लैना सिं जे लेबर लेतब्रम हान अखुइ ब्लड टेस्ट तौरो यिं थोपम दरका तारे याम सिं थिक पाइ तारे को सुगुम्ब तौब्र लहौ तौब मतम जि आंगांग जे ज्ञान मांगब खोप याव गिब खोप किब्र हाइब मामा पासिंग खुई लाइब केयर टेकर है तारीखों से लाप मतम जो खुई प्रॉपर हिस्ट्री में लोब दरकार ले रहे लाइव तौरीजे क्या कुने तौरपनो मागे ड्यूरेशन ऑफ फीवर से को सिगुम दरकार ले रहे मागे एसोसिएटेड सिम्टम्स है तारीखों लाइव के तौरीरा नतगा खोंग हमदब खोटप याउब्रा अतय अतोप ज्ञान मांगब अदुगा आंगांग से सानिंग थानिंग ब फाउदब याउब्रा फिजिकल एग्जामिनेशन तौब मतम द डॉक्टर सिंग न खुई येंग ब याब द खुई जोंडिस कुम ब याउब्रा अदुगा मसाज ये खुई गी हाइ पिंक कलर से फर्स्ट एड पीर हायर सेंटर रेफर तौबीगदी येलो गुमसी हाइपेट हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइज तौर ट्रीटमेंट तब याब तौर फरकान डिस्चार्ज तौबीगो ग्रीन है तारेको ग्रीन जी होम रेमेडियल मेजर्स है तारे मापासी पेरेंट्स तौजब याब है तारदी लाइव गुम तौर खों हमदर है तार पाखत्पीदब अखुई मैम से हेल्थ अवेयरनेस से फैनरबी मैम से लाइव कई तौर मैम से पेरासीटामोल पीथबसी लो खबने पब्लिक से लो अवेयर होमनेब लाइव तौर पेरासीटामोल पीथग फरगद फग्रे फ्रगद मना नप हॉस्पिटल डॉक्टर चलगाब कलर कोडेड अखुई डॉक्टर की अखुई क्लासीफिकेसन खर लेजेबको अखुना हायर सेंटर रेफर तब दरकार लेगे रेफर तौजरकनी अखुना लाइंग ब लाइजगनी नगना डिस्चार्ज तब मतम सुमायने साइन सिम्टम से उलट तारगद चेकअप लापयू नगर हायर सेंटर से चलो है प्रॉपर गाइडेंस से
1: डॉक्टर बनबीब अखोई साइन सिम्टम से करम करम उत्लकानो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अचौब अखोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की हॉस्पिटल पुखलकदरीब साइन सिम्टम से डॉक्टर अमुक्तंग खंजहोगे
0: अखोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की लेवल तब याब है तारगदी येलो कैटेगरी से चल आगामी ट्रीटमेंट तौदे साइन सिम्टम खर लेजे आगाम में डायरिया तौर लाइन खलजे डायरिया से सूल लेप्तन मखों से हमदर अम लेरे नोमद डायरिया है तारगदी अखोई डेफिनेशन लेजेको डायरिया है तारगदी लूज मोशन से nungmada yamzhu da ahum lakta ki hena pastor ka na khuina dairiya ka udui ne ba kho yi chum na gi khong nungma gi amu nyer kan hamu ga khu gi mahinga ta hami da na khuina dairiya ka ubiya de ba 3 times gi khela ba mahinga ta hama ba khuina dairiya ka ungne ba sumai to bo dairiya si da khuina chronic dairiya ha da dairiya ma khala ma le sumai to bo dairiya si tha hum go ma hen jala cha yol ani go ma hela ba sumai to ro la pa ngang sing si de khuina primary health center da laing bu ji khatin khudung cha da ba

0: Akashvani Imphal ge FM Sangai channel da thorom tabi ramli bapum namak po amukhana taram nokseri housing pungpha basila lan thokseri district newsletter da Tamenglong zila gi city ayiba ikhoi gi Tamenglong gi paumi ringbam kamai
1: prithibi mapham kaya da chathabagumna Tamenglong district ta su world environment day school khun amadi organization kayana chatakhi madugi manungda digon female di Tamenglong times amadi Tamenglong baptist church ki youth ministry ga punduna world environment day jun tang tarukta inspired by nature for climate for our future hybrid team da chatakhi Tamenglong baptist church ki youth hall da chatakhi ba world environment day adu directorate of environment and climate change Government of Manipur na sponsor tawduna chatakhi bani numit aduda autonomous district council Tamenglong ge chief executive officer kasam thai phaiga gangmaina chief guest oibiki chief guest aduna environment pu ngakpi ba asi aikhoi miyoi bugi thodang ni aikhoi lakadori ba icha isu singi khanduna umang turen lamgi sanga sing ngakpi ba mathau tai haina phongdokhi ADC gi CEO aduna u pambi thabada horticulture gi pambi muru oina cash crop thasi maduna sustainable source of income su oihangani haina phongdokhi world environment numit aduda rainforest officer RFO Tamenglong Joel Gangmaina guest of honor oina surok yabiki RFO Tamenglong aduna forest resource asi matam khuding phanghanaba ekhoi ecological balance amadi economic benefit ki oina sizin nasi haiki Tamenglong district ta leba khun mayam na umang phajana ngak senduna leri adubu district atai dedi umang kokthok tuna illegal poppy plantation gomba chathari ba asi laibak thibani haina phongdok tuna Tamenglong gi lam mapu singbu thagat pa phongdokhi numit aduda Tamenglong baptist church ki pastor reverend longdapo ryamaina Biblical point of view da environment pu ngakpi na ba gospel tips oina ngangbi khi aduga Tamenglong Baptist Church ki youth director Rathailung Gangmaina world environment day pledge lobada luching khi aduga formal program loisilakpada tree plantation drive su chatakhi marak asida Tamenglong forest division gi official na phongdokhi bada komsi world environment gi tha jun manung da uchara lak amahena thaki haina phongdokhi jan kalyan sevir initiative makhada district administration Tamenglong na sinduna multi purpose hall mini stadium Tamenglong headquarter da numit ahumgi government welfare scheme aduga servicing register enrollment amadi awareness game jun tang taranipan dagi jun kun phau chathaki game aduda district administration gi makhada leba department tara teret mukna stall hangduna service kaya PBK servicing aduda others enrollment PM kitchen scheme registration tuberculosis screening ST amadi atai certificate sing semnakhi program aduda district level officer singna luchingduna praja mayam gi kanagadaba scheme amadi service kaya gi maramda awareness PBK Jan Kalyan Sevir asi public welfare awareness campaign amani masi India pumbada jun tang tarani thoidegi jun tang kun phau chatakhibni masi gi kem na em toba asi central amadi state government scheme mayam asi khongang kayada laiba singdasu benefit adu phanghanna ba honaduna chatakhiba initiative ni Manipur gi oina yamaru oiriba national highway 37 Infal Juri Bam Lambi Asi Phibam Thi Na Sok Sindu Na Leire Matang Asi Da All Manipur Road Transport Driver and Motor Worker Unions Na State Government Amadi National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NISIUCL Bu Athuba Matam Da Simjin Bidu Na Truck Drivers Mayam Gi Awaba Asi Kohan Biu Hai Na Haijakre Khangjinba yai National Highway number 2 Infal Dimapur Lambi Asida blocked Lebanon Maram Oiduna National Highway 37 Asi Manipur gi damak primary supply route oina Silchar Assam degi Port Mayam Pusilakli bani Matang asida driver union singna phongdok hibada nong leptana sukhibuna maram oiduna lambi asi hena sokchinduna pot puba gari singgidamak hena awaba bibiri haina phongdokhi lambi asi matam chana semjin ragadi manipurda petrol diesel lpg gas amadi atai essential goods mayam asi shortage oiba yai haina driver union na phongdokhiba leirabani drivers union gi matung ina jiribam degi infang tamna lakpa asi pung taruk tagi nipan phau lauramba adu haujikti lambi thiba namaram oiduna numit ani muk lauraga leire haina phongdokhi
0: district newsletter da tabi kre tamenglong jila gi city ayi bai khoi gi tamenglong gi paumi ringbam kamai thorum sandokdona tahan jariba si akashwani imphal gi fm sangai channel ni akashwani imphal haujik pungphum sita tabi rasi akashwani imphal gi ipau kangbuna khana na putok pathorum da masa laikhidraba matung da padmasri award phangkhraba nat sankritan gi oza yumnam jatra singha gi matang da mahaki machanupa yumnam bisambar singha ga Akashwani Imphal ki ipau kampu ki dex editor Nomai Kapam Bedamaniga unaduna wari watai saba
2: Aikhoi gi lamdam Manipur asi kala sanskriti da ina khunba amadi malem da lam asida miyamna sakhang biba amadi ikai khumnaba lamdam ama oiri lamdam masigi kala sanskriti da thabak tawriba miyoi singda makhoi makhoi na lam asida lawriba thoidok hendokpa thokdang asibu sakhang biduna ikai khumnaba utli Asigum laba, Muising Asigi Manungda, Manipurgi, Nat Sankritangi, Oza, Yumnam Jatra Singsu, Amani. Laikidraba Ahal Ibungo Asina, Hinglingai Matamda, Nat Sankritangi, Lamda, Loramba, Togdang Adubu, Sakang Biduna, Bharat Sarkarna, Handak, Padma Siri Ewat Piduna, Ikai Kumnaba, Utkre. Ewat Adu Chahi Asigi, Megi Tang Kungamangada, New Delhi gi Rashtrapati Bhavanda Pangthokpa Thoram Amada Oza Asigi Macha Ibungo Yumnam Bisambor Singda Kusinaki Nat Sankritan gi Oza Asina Loramba Thokdang Amadi Mahaki Punsi Wari gi Matangda Ngasi Akashwani Imphal gi Studio da Yumnam Bisambor Singh Lengsin Biduna Leire Oza Bu Ahanba Maktada Taramna Ukchari
3: Thakachari
2: Oza Pabung Asina Laikidraba Matungda Bharat Sarkarna Padma Siri Award Piduna Ikai Khumnaba Utkhare Thenglaba Su Thengna Miyamna Amadi Sarkarna Pabungna Laubiramba Thokdang Adubu Sakhang Biduna Bharat Ki Wanglaba Mana Asi Khusinarakpa Asida Kari Phaubibagi Haibadu Samlapna Thambiyu
3: Yamna Nungai Jai Bharat Sarkarna Ekhogi Babana Tawiramba Tabak Thoram Shaigi Lamda Nat Sankitangi Lamda Tawiramabu Bharat Sarkarna Sakhang Biduna Bharat Ki Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu na Padma Shri Awasibu Aingonda Khushin Nabi Basi Aduki Mati Yamna Thakajingai Ni Yamna Harau Jai Adumapu Babana Lairingai Matamda Pangvi Babara Magadi Aduki Mati Nungai Jari Matamati
2: Yam Nungai Jari Uza Matangi Wahang Asidi Laikhidraba Pabung Asigi Samlappa Punsiwari Mahakna Nat Sankritangi Lamda Khongda Khiba Amasung Ngasi Phaubada Pabung Na Lawiramba Thokdangbu Sakhang Biduna Ikai Khumnaba Utkhiba Amadi Phangkhiba Mana Mathum Singi Matangdasu Khradang Thambiyoza
3: Akhoi Khayu Pukpiramba Konbiramba Lai Oikhraba Akhoi Gi Baba Mingi Oina Pajarabada Yumnam Jatra Singh Kumja Lishinga Masamapan Kulum Doida, September Gitang, Tarantui Meragi, Tarantui Panba, Quagyatran Mita, Tendongan Awang Lakaida, Poki, Kondaraki, Quagyatran Mita, Pui Haiduna, Aikogi Pupuna, Makpu Jatra Haina Ming Ton Gibedi, Mak Lai Wakrava Aikogi, Pupu, Yumnam Tombashing, Amaji, Abo Yumnam Umbi Tambalai, Debigi Masa, Marigi Manunga, Masa Yamini, Nupa Anni. Aikhoigi ima bajigina loinabi
4: राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद करेगा श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार विश्व
3: युमनाम बिशंबुर सिंह ना मचानुपा अतुम बनी बाबा आना चाहिए निपान चंगलपा मतंदा कोजम छेलुंगोबा ओजाम की मयुमदा चत्तुन लाइक तंबा होगी मतं अदु स्कूल लाइक तबना ओजागी युमदा चत्तुन लाइक तंदरकी Babana class, Anishuba, पास तौर मतंग अहम सूब तम खीद्रे बाबा ने चाह त्राइ दो चलपद नट इसई पाजबदी लोता लेकिनब हौबम कला सिंह अहानब इसई तमजी गुरु तमजरुबदी भारत इंटरनेशनल फेस्टिवल क्या सरुक याखी मसीन होना इसई सकप हौर की मतंग दारपद हौबम गुरु ओजा कला सिंह मतदी मामना सिंथारीब मिंगोइना पंजरबर गुरु थौचोम इबोदों सिंह सिनबिदुना ओजा की मफम बोरीदुना इसई तंब मखा तमजरखी जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी 1976 नट इसई की डिप्लोमा फंगी मधुकी मतुंग तारपद सोलिसम चमापन मरफूद नट चोलोम डिप्लोमा लोशनगी बाबा तमजाऊब गुरु सिंह मविंग पंजरबद हौबम कला सिंह लेकिनबी सौजोम इबोतों सिंह खामन इरुंगोम तोलों सिंह सगोन छेम तुमचौ सिंह खोमदोन सिंह सगोन छेम कालीदमोन सिंह नुंगोंबम निमाईचान सिंह निमाई सिंह मैत्रम मैबम इबोन सिंह निगोम थोंगजाओ खांगेंबम गुलापी सिंह एलांग लेकाय श्रीनबदेव सिंह उचीवा थांगयम चाव सिंह पनब आए पाबद तमजाऊबी लोन जहाब छात्र खरद पनबद बाबा की छात्र सिंह मैमीद्रे तोब बिशंबोर सिंह हिजम सनातोपी सिंह एंगबम नातुम सिंह सोबम थम्बू सिंह कोजम थम्बू सिंह लौरेम राजमणि सिंह एलांगम पिशक सिंह लाइसम मदन सिंह थौचोम नीलकांत थौचोम सुधी सिंथाम चंद्रमणि लौरेम्बम इबोमचा इरोम जमसन सना थोय लाइसम बिरीजीत कुमदेम थोय पनब आए मा की लेव छात्र मैम नट संकीर्तन योखल हौरी बाबा ने हिंग नट संकीर्तन योखनब थोदा क्या लौरमी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एंड अकादमी की विजिटिंग गुरु ओरब श्री श्री गोविंद जी नहा पला की सैसकू ओरमी ऑल इंडिया रेडियो एप्रूव आर्टिस्ट हो भारत भारत की वाद संकीर्तन थ्रीन थ सन्दोंपरमी भारत इंटरनेशनल फेस्टिवल क्या सरुक याखी तुंग तोान तोान मना क्या फंगी खरन पंजरबद बृहचंद्र की लोनबीना खामें सेप सना खुजी घटान पीबीदना इकाई खुद फंगी मणिपुर साहित्य परिषद ना 2008 नट भुजन पीबी की मणिपुर स्टेट कला एकादमी स्टेट कला एकेडमी एवार्ड इन नट संकीर्तन 2000 पीबी की 2013 यूनेस्को ना संकीर्तन इंटरविजन कल्चरल हेरीटेज सखंगद मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की संकीर्तन की डिपार्टमेंट सेमकटपद चाव थौदांग लौबीरमी गुलू करा मेमोरियल एकेडमी कैच अवार्ड इन नट संकीर्तन दुहार 2000 पीबीरमी द कल्चर फॉर मणिपुर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन नट इसई 2015 पीबीरमी गुरु गुलापी नट संकीर्तन गुरु लेमपुपम हेराचंद्र मेमोरियल अवार्ड 2016 पीबी की मणिपुर साहित्य परिषद ना नट रत्न इन संकीर्तन टाइटन 2017 पीबीदुना इकाई खुमनेबी की इंटरनेशनल संकीर्तन डे सेलिब्रेशन कमिटी हरिनाम महामंत्र अवार्ड 2019 पीबी की 2022 बराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बोल तारापुर मणिपुर कल्चर असम सखंग भी की संगीत नाट एकेडमी न्यू दिल्ली ना संगीत नाट एकेडमी अमृत अवार्ड 2020 पीबी दुरा इकाई खुमनेबी की बाबा ने मसा की सही चाम अहू सुरक्षपद लेखीद्रे सही अच्छी मे की तंग कुमांग तौजरम थबक थोरम मयाम सखंग उपीदुना प्रस्फुलिति पद्मश्री अवार्ड चू पीबी रखी
2: याम नुंगाइजरे लेखीद्रबा ओजा जत्रागी पुंसी इवारी असी ताबतुसु यामना पुंगनि नुंसिबा मफाउजे मथंगी वहांगसिदि ओजादि पाबुंगा नकना लोइनरंबा अमदि पाबुंगना हिंगलिंगै मतमदा नट संकीर्तनगी लमदा लैरंबा मतमदुगी मोंग मतो अदुगा ngasi ओरिबा मोंग मतो असिगा खेनबलै हाइना खनबिब्रा करिगुंबा खेनबसिंग अदु ओजागी मोता करम करमबा मोंगदा हेना फना अमदी कला असिबु मतिक मगुन याउना फंगन्नबा मोट अमतंग थंबिरमु
3: मतमदुदा कोई बाबा होइना छात्र सिंह तंबिरमदी युमद लागा छात्र सिंह खोरमदना बोरीदना अथेम बोट कादना तौदना इसई तंब हौजगी Hojiki Matamda, Taurami Vajina, Adugumbab, Gimahuta, Wadabu Buri Matunga, Shaitam Bagimahuta, Hojikang Chakola Pugi Matungina, Elotunita, Ayambo and Shina Duna, Ishayaji, Tamnagre Hojiti, Wajagi Mayum the Satana, Ishaitam Badu, Tamnadre, Kole Singh the Satana, Satra Singina Kole Do in a Tamnagre.
2: Yamna Nungaizare, Handakta. Padmasiri Award Piduna, Ikai Kumnaba Utkraba, Nat Sankritangi Apauba Oza, Laikidraba, Yumnam, Jatra Singhi, Machai Bungo, Yumnam, Bisamborna, Ngasi, Akaspani Infalgi, Studioda, Lingsin Biduna, Wari Watai, Sanabagi Tanja Ama, Bibi Bagita Makta, Tagachari.
3: Babu, Ninching Biduna, Paja Singda, Kena Masakangan, Bigigigamak, on India, Duna, Program Shishin Vigigamak, Hanya Laitana, Tagachari.
2: Aroi bawahang asidi oza pabungna nat sankritan gi lamda khongdara pamatamda awaba mayok na kibagi matangda su kitang samlapna thambi
3: baba ji nai sei tamba chatri ma mangda ayukta lou shungu gi thabak tawna sambok khoi ma matungda halaga khamanta na kilometer taruk tere makhong chalaga isei hi tamnami aduki mati wana isei tamba chali halak pamatamda sa hing chatana wana halaga Yumda Sakyagi Dukimati Wana Ishay Hit Tamdana Mahasi Yangwana Ishay Tambaji Matamdadi Shakala Ramdadana Makong Chalaga Ishay Hitambirami Atiangwa Halakamatamda Lambida Babana Tambirami Sa Tengadana Sapangam Dadana Kuina Liatan Lera Matunga Lai Korama Matunga Sadhuna Lai Koramaga Koram Jaraga Hajaraga Sadhuna Lambi Fatokana Yum Yogana Laki Bayawi Hena Babana Tambirami Akogi Pupu Kamangi Mingguan yang pada berai voto na Bangladesh, Tripura, Kasar, Khojai, Lanka, serta matamda, aku gigi bapa si, magi, rai, henuina, kui pupu pupu dengan calami, bapa na, cali bersi, pupu, voto ni na, pupu bidana magi mahu cinduna, sehi tambiba, kaya asu Bangladesh ta, pupu si serta ngamdatna, bapa si guna, calaga, thata utere, leitokwa cahiya ma leitokwa, ani leitokwa, semua itu dana. Magi sebok maya mama atopa topa bahar ki Bangladesh, Khojai, Lanka, Tripura, Karimgas, Kasar, Manipur ki mapan da maitei tapa mapam jingi da Shankirton bu santok tana babasi na magi sebok maya mama thambirami. Mata mama da khaman ki pupuji na Manipur ki baso kaina isai kanna sakpa matam jida akoi babasi mana pupu dana Manipur ki mapam mapam kudin mukta atheng bada saikan tuong dana Isai Chatana, Pupugi, Duhar, and Kupu Pudramati, Matamduki Basu, Isai Chapuji Chalami, Matamaduda, Shaikalna, Lam Sanga Sanga Sepada, Yumda Halapumatanungan Bayawi, Shaikan Birata Udana, Yamwana Yumda Yoropa, Yawi, Pataba Meetingadana, Tamkata Udana, Lambida, Isai Chahanbaba Yawre, Babahoi, Yamwana, Shakitala Sibu Sakona, Vitam to Honavada, Dokimatiguana, Chatana Isai. Chalak pani. On India Radio ki hip-hop artist Oyambaga Mahaki Yenkoting Mayamama Lobirambadu Akoi Khwaigi Lan Ojabani. Thainegi Generation ki artist ama Oibana On India Radio na Sinna Main Performance Pibiri bani Yumthong Kudingda Yohana ba On India Radio na Sinbi bani. Baba na Hinglai Matamda na Shakitabu Yokana wa Thawdaang Kaya Lobirambadu Bara Shakana Sekarang bidungnya Padmasiri Award, Pibir Bebasnya Mungkin, Shower Bucketit, Jawaran itu Manipur Dance Academy Gi, Director Mingguinnya Panjara Bada, Pukaman Bilas Na Kanna, Hune Biki, Astet Government Amadi, Aryan Kacar Bu, Manipur Amasung Aryan Award Asih Bu Pangna Ba, Hune Biki Bu Manipur Kudi Mungkin Ehang Thakacari.
2: Matangi Wahang Asih Oza Oza Hoi Gi Imu Menungda, Nasangkritan Gi Lamasida, Hongda Biba Yaubra.
3: Hai bersih kita tang desu samlap netambiu. Bapa na, aku kita isai tau bersih karena mata yaudie adung aku, aina angang wengi matamda class 4-5 tamengi matamdu da gaulilila yamna sanarami jagoi gaulilila sanjeng mas sanam matamida bapa na, ai nang iskundagi lao aduga isai tam bersih yau lao gaulilila si yau aydana matamdu da aku kita tangi bangi. Shagun jengi mantau pada nama lelaki macam itu, isai hitam dana, gawai lagi isai siapa, wina, aku ini papa lah, wina, payom angang bersih laga, isai gawai lagi isai ia horam dai, Sanjemba Horum Dajida, Kunupa Palam, Yamjigina, Shay Shakana, Sankiton Shakra, Kaurila, Sanjemba Jiba Horami, Matamdu Dadi, Angang, Wibanina, Amukta Sutaudria Dubu, Kutatuda, Babana Kauri, Shay Shakoyahon Buda, Ahi Yamnawana, Shay Yupada Badagi, Sholom Dodo, Matamuto Hodobi, Kakangwai, Adumbu, Anina Suna Sumakwa, Anina Suna, Kumakota Dadi, Ayak Kajana, Shay Du Kumbangi, Adumatangi Matungina, Sakola Badagi, Matam Sangna, Humtor Badagi, Mapana Chapamatamda, Laikagi, Kang Himumatamda, Shay Shakana, Shankiton Tobuda, Ayak, Muibung Kongana, Kang Himbugi, Muibung Konga, Shankitongi, Deva Karmapunong, the Muibung Kongotorami, Adumu Matamna, Wanakitana, I get Tabaki Gasana, the Badagi, I have a Tabaki to a Hogi Hogi, Babana Tobiramba, Manipurgi Maming Leba, Holy Pala, Lamabam, Holy Pala number one, Sida, Babana, Shay Tobiram Badagi, Babana. Yawiram Badagi Mawit Chinduna Hoyogi, Lamabam Holy Palata, Membaramu and Shay, Yaujeri, Shiki Matunta Koda, Aigi Sanupa, Babagi the Masuji, Pigna, Dance College, Dani Rumani put dance college Ming Jandana Ishai Tamalami. Shay Shahiamani, Tamamatunga, like Tambaga, Ishai Tambaga Sana Doctor Badagi. Tishan Zapagi Matanga Ishai Tamai Matam Kena Badagi Angangu, Ishai Tamatoki, Masi Matunga Hoygi Babagi. Matung in Baji, Kanamata Hildre, Hojik Ayana, Namabum Holy Dunda, Shahigi Wena, Holy Kaba, Sida Ikara Yauja Vajinatana, take a mata, Babagi Maha, Tatabala Yauze
2: Yamna Nungaizare, Handakta, Padmasiri Ewat Piduna, Ikai Kumnaba, Utkraba, Nat Sankritangi, Apauba, Oza, Lake Draba, Yumnam Jatra Singi, Machai Bungo, Yumnam Bisamburna, Nasi, Akaswani Infalgi, Studio Da, Lingsin Biduna, Wari Watai, Sanabagi Tanja Ama, Bibi Bagita Makta, Ozabu Tagachari.
3: Babu, Ninching Biduna, Paja Singda, Enamasa Kangan, Bibi Dama, on India Duna. Program is shinmi begi damak hanyai leitana takachari
0: hauzik tabi kre akaswani imphal ge ipau kamuna kanana puthok pathorom da masa leikidraba matung da padmasri award phangkhraba nat sankritan yoza yumnam jatra singa gi matang da mahaki machanu pa yumnam december singa ga akaswani imphal ge ipau kambu gi dex editor nomaika pam bedamani ga unaduna wari batai saba Thorum Sandukuna Tahan Zeribasi Akaswani Infalgi FM Sangai, Channel 9.

0: आप हर श्रृंगार सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोताओं, रात दिन का वो खूबसूरत हिस्सा जब शोर थम जाता है, हवाएं धीमे धीमे बातें करती हैं और दिल पुरानी यादों के पन्ने पलटने लगता है। कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। उनकी धुन हमें कभी बचपन में ले जाती है, तो कभी पहली मोहब्बत याद दिलाती है, तो कभी उन लोगों का एहसास करा जाती है जो आज हमारे साथ नहीं है लेकिन यादों में हमेशा बसते हैं। तो आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आहूति से।

जी हाँ, साथ ही मेरे साथ ही गीत आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश जी की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी साहब के बोल, हर श्रृंगार सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

श्रोताओं, तस्वीरें कभी बोलती नहीं, लेकिन जाने कितनी कहानी अपने भीतर समेटे रखती हैं। एक तस्वीर में कैद एक पल अक्सर पूरी जिंदगी की याद बन जाता है। कभी पुरानी अलमारी से निकली हुई कोई तस्वीर हमें बरसों पीछे ले जाती है। कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए मिलते हैं, कुछ रिश्ते याद आते हैं और कुछ पल बस आंखों में ठहर जाते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी है, हर दिन एक नई तस्वीर बनाती है। कुछ तस्वीरें रंगों से भर देती है, कुछ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन हर तस्वीर हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाती है।

10:54 और ठीक 5 सेकेंड हर श्रृंगार सेवा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और हर श्रृंगार का आखिरी गीत हम लेकर आए हैं फिल्म मशाल से। जावेद अख्तर साहब के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत और आवाज किशोर कुमार।

0: अस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में. आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने. सपने कितने सुंदर कितने प्यारे, ये हमारी आंखों में रंग भरते हैं, दिल में उम्मीद जगाते हैं और जिंदगी को मुस्कुराने की वजह देते हैं. कुछ सपने रात की नींद में आते हैं तो कुछ खुली आंखों से देखे जाते हैं. कोई अपने अपने अपनों के साथ खुशियों का संसार बसाने का सपना देखता है तो कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने का. सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. वो बताते हैं कि अगर हौसला हो तो कल्पना भी एक दिन हकीकत बन जाती है.

लिबास फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहते हैं अगर जिंदगी में सपने न हो तो जीने का उत्साह भी अधूरा रह जाता है। सपने ही तो हैं जो हमें नई उम्मीद देते हैं, नई राह दिखाते हैं और हर सुबह को एक नया अर्थ देते हैं। कुछ सपने बचपन की मासूम आंखों में पलते हैं, कुछ जवानी के अरमानों में रंग भरते हैं, तो कुछ उम्र के हर पड़ाव पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाते हैं। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, वो मन के उस खुले आकाश में उड़ते हैं जहां हर इच्छा को पंख मिल जाते हैं।

मासूम फिल्म का गाना आपने सुना आरती मुखर्जी की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:31 और 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

हरजाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में. निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने. सपनों की दुनिया सचमुच बड़ी निराली होती है. यहां ना कोई बंधन होता है ना कोई दूरी. मन जहां चाहे जैसे चाहे उड़ान भर सकता है. सपने कभी फूलों की तरह कोमल लगते हैं तो कभी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे. कभी वो हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं तो कभी किसी अपने की मीठी याद बनकर आंखों में उतर आते हैं. जिंदगी की भागदौड़ में जब मन थकने लगता है तब यही सुंदर सपने हमें सुकून का एक कोना देते हैं. वो बताते हैं कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद खुशियों की एक नई किरण हमारा इंतजार कर रही होती है.

ना खुदा फिल्म से आपने ये नज़्म सुनी नितिन मुकेश की आवाज़ में लता मंगेशकर के साथ. इसे लिखा निदा फाजली ने और संगीत दिया खयाम ने. सपनों की कोई भाषा नहीं होती लेकिन वो हर दिल की बात समझ लेते हैं. किसी का सपना अपने परिवार की मुस्कान होता है, किसी का अपने जीवन में सफलता पाना, तो किसी का अपने प्रियजनों के साथ कुछ सुकून के पल बिताना. छोटे छोटे सपने ही तो जीवन को बड़ा और खूबसूरत बना देते हैं.

बरसात की एक रात फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में. आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने. और जब इन सपनों को साथ मिलता है मधुर संगीत का तो हर धुन दिल के किसी कोने में जाकर बस जाती है. कोई गीत हमें बीते हुए सुनहरे दिनों की याद दिलाता है, कोई आने वाले कल की उम्मीद जगाता है, तो कोई बिना कुछ कहे ही मन की बात कह जाता है. यही तो है संगीत का जादू जो सपनों को सुर देता है और भावनाओं को आवाज़.

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में, वर्मा मलिक ने इसे लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में ठीक 1 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026-2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। लंदन में आयोजित एक व्यापार सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और ब्रिटेन के उद्योग जगत से आपसी सहयोग को और मजबूत करने, नवाचार को गति देने तथा साझा समृद्धि के लिए अधिक महत्वाकांक्षी निवेश करने का आह्वान किया। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों के T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर ही सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

भीगी रात फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। गीत सुहाने जहां हर धुन कोई याद जगाती है, हर शब्द किसी एहसास को छू जाता है। पुराने सुरीले गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर नए से लगते हैं। इन गीतों में प्यार है, इंतजार है, रूठना मनाना है, सपने हैं और जिंदगी के अनगिनत रंग हैं। कभी कोई धुन चांदनी रात को और भी हसीन बना देती है, तो कभी बारिश की बूंदों में भी संगीत खुल जाता है।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने

दुल्हन एक रात की फिल्म का आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने एक सपने की सुंदर कल्पना सपने में एक मासूम सी इल्तिजा कबूल हो जाए तो सो जाऊं

जाल फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में. साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने. कुछ बातें होठों तक आकर भी शब्द नहीं बन पाती, वो दिल के किसी कोने में चुपचाप बस जाती हैं, और जब कोई मधुर धुन उन्हें छूती है तो वही खामोशी एक दास्तान बन जाती है.

अनपढ़ फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 25 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म से आपने ये गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। इसे लिखा एसएच बिहारी ने और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस दिल की पुकार है जो अपने किसी बेहद अजीज को हर धड़कन में महसूस करता है। इंतजार की खामोशी हो या यादों की महक, ये नगमा हर उस एहसास को आवाज देता है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। पतिता फिल्म का ये गाना आपने सुना लता और हेमंत कुमार की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

प्यासा फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। कभी कभी जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब कोई साधारण सी बातचीत भी दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। न जाने किस बात में ऐसा जादू होता है कि अनजाने में ही दो दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ एहसासों को नाम नहीं दिया जा सकता, बस उन्हें महसूस किया जा सकता है।

ममता फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। पुराने सुरीले गीतों की यही तो खूबी है कि वो प्रेम को बड़े सलीके और सादगी से बयान करते हैं। उनमें अपनापन है, भरोसा है और साथ निभाने का एक खामोश सा वादा भी।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। वक्त हुआ है 1:57 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिन के सेशल्स के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के दो जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026-2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की शुरुआत की। इसमें करीब 210,000 किलो

0: मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी NCB ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Home Minister Amit Shah has laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau yesterday, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. He also launched a drug disposal fortnight under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances valued at around 6,000 crore rupees will be destroyed. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the 10th annual UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, the India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy.
3: The UK agreement is a template which is very comprehensive. It's not only about tariffs and rules of origin. It's not only about traded goods and services. It's about collaborations in technology, in education, culture, the arts. It is focused on bringing the best of both countries to each other. It's a fair, equitable, very balanced agreement.
2: At the business plenary session in London, Mr. Goyal said India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK CETA. He invited businesses in both countries to deepen engagement, accelerate innovation and invest with greater ambition. An Ayodhya court has remanded all 8 accused arrested in the alleged Ram Temple donation scam to judicial custody till Monday. The accused were produced before the Chief Judicial Magistrates Court following their arrest. Prosecution officer KC Verma said more than 79,85,000 rupees had been recovered from the accused except one, Subhash Srivastava. The 8 arrested are Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastava and Ramashankar alias Tinu. National Biodiversity Authority has released a standard operating procedure for the scientific identification and notification of threatened species by states and union territories. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change said the SOP aims to ensure a uniform, transparent and scientifically robust processes for identifying, assessing and notifying threatened species. India, described as one of the world's mega diverse countries, is home to a wide range of plant, animal and ecosystem diversity. However, species are increasingly under threat. The SOP will assist state biodiversity boards and Union Territory Biodiversity Councils in identifying threatened species in a consistent manner and recommending them to state governments for notification. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. After Abu Bakr gave Pakistan an early lead, India staged a remarkable comeback with 7 different goal scorers. Sukhjeet Singh and Harmanpreet Singh scored in the second quarter, while Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal added 4 more goals in the third. Dilpreet Singh completed the rout with a goal in the fourth quarter. India will next face England tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

नदिया के पार फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

सौदागर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं, उनमें ना कोई शर्त होती है ना कोई दिखावा, बस साथ निभाने का एक सच्चा वादा होता है।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ फूलों में नहीं, यादों में भी बसी होती हैं। वो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि हर बार किसी अपने का एहसास और गहरा कर जाती हैं।

खानदान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 46 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

पुरानी फिल्म का यह नगमा था और आवाजें थी लता जी और मुकेश साहब की आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में। और हमराही में अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और वो नगमा है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म मेरा नाम जोकर से। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में खुद राज कपूर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था, और उनके साथ थे ऋषि कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, पद्मनी, सिमी ग्रेवाल, दारा सिंह, ओम प्रकाश, राजेंद्र नाथ, अचला सचदेव वगैरह। ये अपने दौर की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जिसके गीत बहुत ही प्यारे थे और उसके गीतों को संगीत से संवारा था, यानी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मधुर संगीत से संवारा था शंकर जय किशन साहब की जोड़ी ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है आशा जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।

संगीतकार ने जिनका नाम बस थोड़ी ही देर में हम लेंगे, पहले सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन साहब।

फिल्म का ये नगमा था और आवाज़ें थी लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब की। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है हमराही की। और दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, अपने संदेशों के ज़रिए। और उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल आईडी है हमारा, नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि आप अपने पैगामात, अपने फीडबैक हम तक पहुँचा सकें। मेल आईडी है हमारा FM Gold AIR Delhi FMGOLDAIRDELHI@gmail.com। तो इस पे आप अपने पैगाम हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और आप अपने दिल की बात हमसे जरूर कीजिएगा। रात के इस पुरसकून महफिल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। पुराने फिल्मी गीतों की सबसे खास बात यही है कि वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि अपने दौर की रूह, रिश्तों की गर्माहट और जिंदगी की सादगी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो अपने आप में बेहद खास है। कई बेहतरीन आवाजों का ऐसा खूबसूरत संगम है जो सुनते ही दिल में एक अलग सी रौनक भर देता है। हर गायक की आवाज इस गीत में अपना अलग रंग बिखेरती है और मिलकर एक यादगार समा बांध देती है। इस गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है लता जी, गीता दत्त जी, मुकेश साहब और मन्ना डे साहब के साथ साथ महेंद्र कपूर ने। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और ये नगमा है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। बेहद खूबसूरत ये नगमा और उतने ही खूबसूरत ये फिल्म भी थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब की बहुत ही खूबसूरत जोड़ी ने। और ये फिल्म आई थी 1960 में।

जिस देश में गंगा बहती है इस फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 4:10 पर लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिन की सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के दो जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी भाग लेंगे गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की शुरुआत की इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक एआई महत्वपूर्ण खनिज रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं पूर्वोत्तर भारत पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
2: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Senior functionaries from the cooperative sector, representatives of various institutions and more than 4,000 sarthis associated with Bharat Taxi will participate in the program. Bharat Taxi is a digital mobility platform built on cooperative principles. It will initially be launched in 14 districts of Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with plans to expand its services across the state within the next month. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the 10th annual UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, "The India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy." Department of Atomic Energy Secretary Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper-chlorine thermochemical cycle. The facility uses nuclear process heat from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam, Tamil Nadu. On this occasion, Dr. Mohanty said the integration of nuclear energy with emerging clean energy technologies such as hydrogen

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचारों के बाद एक बार फिर स्वागत है आप तमाम सुनने वालों का अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:11:25। तो आइए इस बेहद खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ, और वो नगमा है फिल्म मेरा साया से। आवाज है लता मंगेशकर जी की, और इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है मदन मोहन साहब ने। कहते हैं कि जब जिंदगी में आपका कोई अपना साथी हो, जो आपसे कदम से कदम मिलाकर चलता हो, और वो कहीं पीछे भी रह गया हो या आगे निकल गया हो, लेकिन फिर भी उसको आपका एहसास रहता हो, आप उनके दिल में रहते हो, तो फिर समझें वो बिल्कुल आपके साये की तरह है। हर कदम पर आपके लिए अच्छा सोचता है, हर कदम पर आपके लिए अच्छी बातें करता है। ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में, और फिल्म मेरा साया का ये नगमा कुछ यूं ही बयान करता है ऐसे ही जज्बात को ऐसे ही अल्फाज के साथ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

साया का ये नगमा आवाज थी लता जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में। रात का ये पहर अक्सर हमें खुद से मिलने का मौका देता है। दिन भर की भाग दौड़ थम जाती है और दिल की आवाज कुछ ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी बातें हमेशा लंबे अल्फाजों में नहीं होती, कभी एक मुस्कुराहट, कभी एक दुआ और कभी सिर्फ दो सच्चे लफ्ज किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए अगर आपके दिल में किसी सपने के लिए, किसी अपने के लिए मोहब्बत, शुक्रिया या अपनापन है तो उसे कहने में देर मत कीजिए। हो सकता है वही दो लफ्ज किसी के लिए सबसे कीमती तोहफा बन जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। इन्हीं खूबसूरत जज्बात को बेहद दिलनशी अंदाज में पेश करता है अगला ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। इस यादगार गीत को अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाजों से सजाया है आशा भोसले जी ने और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन साहब ने। उनकी आवाजों का ये अनोखा संगम इस गीत को और भी खास बना देता है जब उनकी जबान से निकलते हैं। तो आइए रात की इस महफिल में कुछ पल अपने दिल के नाम करते हैं। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान सजाइए, पुरानी यादों को प्यार से सलाम कीजिए और सुनिए ये सदाबहार नगमा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। जिंदगी तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे अल्फाज किसी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद जगा देते हैं।

लफ्जों की है दिल की कहानी। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा आशा जी और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात की इस खामोश फिजा में आप सुन रहे हैं।

अरुणिमा। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा कोई बड़ी दौलत या शोहरत नहीं बल्कि किसी अपने का साथ होता है, एक ऐसा साथ जो मुश्किल राहों को आसान बना दे और उम्मीद की शमा हमेशा रोशन रखे। जिंदगी में हर वक्त किसी का साथ मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन अपने हौसले का साथ कभी मत छोड़िएगा। कहते हैं जब इंसान खुद पर यकीन रखता है तो मंजिल भी उसका इस्तकबाल करती है। इस खूबसूरत जज्बात और सुरों से पिरोया ये अगला सदाबहार नगमा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी आवाज़ लता मंगेशकर जी की इसके दिल को छू लेने वाली धुन तैयार की है मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और इसके गीतों को लिखा है जो बेहद जज्बाती है संतोष आनंद साहब ने। तो आइए इस पुरसुकून रात में रिश्तों की गर्माहट भरोसे की खुशबू और उम्मीद की रोशनी को महसूस करते हैं, अपने दिल को इस मधुर सुरों के हवाले कीजिए और सुनिए ये बेहद खूबसूरत नगमा। रिश्तों का सबसे खूबसूरत रूप वही है जहां भरोसा मोहब्बत और दुआएं साथ चलती है, और जब अपने साथ हो तो हर सफर थोड़ा आसान और हर सुबह थोड़ी ज्यादा रोशन लगने लगती है। तो आइए हम और आप मिलकर चलते हैं इस बेहद खूबसूरत संगीत के सफर पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:37 और 32 सेकेंड। रात का ये पुरसुकून पहर हमें जिंदगी की रफ्तार से कुछ पल चुरा कर

अगला ये सदाबहार मौसम फिल्म का नगमा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस बेहद खूबसूरत गीत को अपनी दिलकश आवाजों से अमर बनाया है लता मंगेशकर जी और भूपेंद्र सिंह ने। दोनों की आवाजों का ये संगम इस गीत को एक अलग ही रूहानी एहसास दिलाता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। तो आइए इस पुरसुकून रात में कुछ पल खुद के नाम करते हैं, यादों की खुशबू, फुर्सत की मिठास और सुरों की नफासत के साथ सुनते हैं ये बेमिसाल नगमा। कहते हैं कि फुर्सत का इंतजार मत कीजिए, अपने हर दिल में कुछ पल सुकून के जरूर रखिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि हर लम्हे को दिल से जीना है, और यही आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा।

रात दिन। मौसम फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा आवाजें थी लता जी और भूपेंद्र साहब की। रात की खामोश फिजा अक्सर हमें सोचने का वक्त देती है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सब कुछ ठहर सा जाता है तब दिल अपने कुछ ख्वाबों, कुछ यादों और कुछ अधूरी ख्वाहिशात से मुलाकात करता है। ऐसे ही लम्हे में एक बात हमेशा याद रखिए, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना लगे, सफर कभी बेकार नहीं जाता। हर कदम अपने कुछ नया सीखने और सिखाने का होता है। हर तजर्बा हमें और मजबूत बनाता है। उम्मीद का दिया अगर दिल में जलता रहे तो दूर का उजाला भी एक दिन अपना हो जाता है। ऐसे ही गहरे एहसासात को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए हैं फिल्म आनंद का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इस अमर नगमे को अपनी दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली आवाज से अमर बना दिया है मुकेश साहब ने, और इसके बोल लिखे हैं बेहद जज्बाती योगेश ने, जिनकी जिंदगी, जिसकी सादगी, सब कुछ है इसमें। तो आइए रात के इस पुरसुकून सफर में कुछ पल ठहरते हैं, अपने ख्यालात को खुली फिजा में उड़ने देते हैं और सुनते हैं ये सदाबहार रूह को छू लेने वाला नगमा। जिंदगी का हर नया सवेरा हमें एक नया मौका देता है। बीती हुई बातों से सबक लीजिए, लेकिन अपने आज की रोशनी को कभी कम मत होने दीजिए। उम्मीद, सब्र और मुस्कुराहट, यही वो सब हम सफर है जो हर अंधेरी रात के बाद हमें नई सुबह तक लेकर जाते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं इस बेहद खूबसूरत सफर पर, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

0: फिल्म प्रेम पर्वत के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत अरुणिमा से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर अगला प्रोग्राम ठीक 5:10 पर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और सेशल्स के संबंधों का आधार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच निकट संपर्क में निहित रहा है। प्रमुख समुद्री सहयोगी देश के रूप में सेशल्स का स्थान क्षेत्रीय सुरक्षा और समग्र विकास के भारत के महासागर दृष्टिकोण में विशिष्ट है। अविकसित देशों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता में भी वो भागीदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित एक डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वामित्व के लाभ प्राप्त होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 के अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इसकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्जी रॉड्रिक्स ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी है। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Senior functionaries from the cooperative sector, representatives of various institutions and more than 4,000 Sarthis associated with Bharat Taxi will participate in the program. Bharat Taxi is a digital mobility platform built on cooperative principles. It will initially be launched in 14 districts of Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with plans to expand its services across the state within the next month. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the 10th annual UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, "The India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy." Department of Atomic Energy Secretary Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper-chlorine thermochemical cycle. The facility uses nuclear process heat from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam, Tamil Nadu. In Kolkata, the death toll in connection with the Taratala building collapse has risen to 16. The injured are being treated at SSKM Hospital. Police have arrested six people, including a government official, in connection with the incident. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Abelardo de la Espriella on his victory in the Colombian presidential elections. In a social media message, Mr. Modi conveyed his best wishes to Mr. de la Espriella for a successful tenure, saying that he looks forward to working together to further deepen bilateral relations. U.S. Secretary of State Marco Rubio announced a U.S.-mediated framework agreement between Israel and Lebanon aimed at achieving lasting peace and security. The proposed deal includes a ceasefire contingent on Hezbollah halting all attacks and withdrawing from southern Lebanon. Announcing the framework, Rubio described the agreement as the first step toward restoring stability while acknowledging that the path ahead would be challenging but equally vital. Lebanon's ambassador

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और दोस्तों हम सब एक नई सुबह में कदम रखने जा रहे हैं एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नए सपने के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे आज की इस नई सुबह में एक नई उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला दिन अच्छा हो और हर तरफ खुशियां हो हर तरफ खुशहाली हो और जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि हम भारतीय मानते हैं कि हम अपने हर दिन ही नहीं बल्कि हर काम की शुरुआत हम उस खुदा का नाम लेकर करते हैं उस ईश्वर का नाम लेकर करते हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की जिसने हमें जीवन दिया जिसने हमें इस दुनिया में भेजा हर काम हम उनके नाम से करते हैं हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं से कि हमारा दिन अच्छा हो हमारी जिंदगी अच्छी हो और हमारी हर सुबह खूबसूरत हो तो आइए हम भी आज की सुबह का आगाज करते हैं ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत प्रार्थना के साथ ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ फिल्म द बर्निंग ट्रेन से आवाज है सुषमा श्रेष्ठ और पद्मनी कोल्हापुरी की आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में

तेरी है जमी तेरा आसमां, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, सब कुछ तेरा है। हम इंसान बस कठपुतले की तरह है। तो ईश्वर है, तो खुदा है, तो भगवान है, तो सब कुछ है, और इसीलिए हम सब तुम्हारे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि नई सुबह सुनहरी किरणों के साथ आपका इस्तकबाल करता है। रात की खामोशी अब धीरे धीरे रोशनी में बदल रही है। फिजा में ताजगी, हवा में एक नई उम्मीद है, और हर नया सवेरा हमें ये पैगाम देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जिंदगी भी सुबह की तरह है, चाहे रात कितनी ही लंबी या मुश्किल क्यों न रही हो। सूरज हर रोज बिना शिकायत के फिर उगता है, यही हमें सिखाता है कि बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आज को पूरे यकीन और मुस्कुराहट के साथ अपनाइए। ऐसा ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हैसियत से। सुकून भरा यह नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया है यशुदास ने, और साथ ही साथ वाणी जयराम ने। दोनों की आवाजों की सादगी और आत्मीयता इस गीत को सुबह की ताजा हवा जैसा एहसास देती है। तो आइए अपनी पहली चाय की चुस्की के साथ दिल में नई उम्मीदों का उजाला भरिए और इस खूबसूरत सुबह का इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि हम सब एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए दिन की शुरुआत कर चुके हैं। भले ही कुछ लोग अभी भी अपने बिस्तर में हैं, बाहर नहीं निकले हैं, जगह नहीं है, लेकिन ये परिंदे चहचहाने लगे हैं, अपने गीत सुनाने लगे हैं और आपको जगाने लगे हैं अपनी इस आवाज के साथ।